0: इसके बाद 9 बजे से लेकर 10 बजे तक आपके लिए पेश किया जाएगा तफहीमुल कुरान। सुनते रहिए इंस्पायर एफएम।
1: بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل

0: Hello and welcome Dallas Fort Worth and the whole world listening to Radio Azad, Voice of the People. Tamam sunne walon ki khidmat mein assalamu alaikum. A very very warm welcome to the show. Sun rahe hain ji aap bol ke lab azad hain tere.
1: Ye to azad ji to itna mushkil aapne kiya ke matlab koi aapko aap pe hi camera hai aur aap hi sab kuch kar rahe hain warna to ye hota hai na ki baat reply ho rahi hai to aap jawab de rahe hain to wo ek alag hota hai lekin sirf aap par hi rakh ke pure expression lana aur aap matlab aap direct bhi kar rahe the unko ke is tarah se karna hai kyunki ye waqai badi natural cheez hai ki aap khate hue to rukte thodi hain
2: lekin unko aisa nahi chahiye hota na wo basically jab aap khate hain to tuk tuk ki awaaz bhi aati hai cheezein bhi aati hain to wo usko bahut simple karna cha rahe the to kai log jo hote hain na wo simplistic tarike se scenes lete hain which is perfectly fine aapko jo director bolta hai aapne wo karna hota hai to puri film mein mujhe डायरेक्टर ने दो दफा इंस्ट्रक्शंस दी उसके अलावा फर्स्ट टेक सेकंड टेक में सारा कुछ हो जाता था उन्होंने बड़ी तारीफ करते थे बड़ा प्यार करते थे और कभी मुझसे किसी ने नहीं कहा कि ये सीन ठीक नहीं हुआ इसको दोबारा कर दें बल्कि मैं खुद कहता था एक दफा और कर लें एक दफा और कर लें
1: नहीं वो रोल तो बिल्कुल आप जैसे कहते हैं ना कि एक अंगूठी में नगीने की तरह क्योंकि आप तो थे हैं भी माशाल्लाह से पठान और आपका जो एक कैरेक्टर था वो उस रोल के लिए बिल्कुल परफेक्ट था बल्कि आप उनको गाइड कर रहे थे कि इस तरह नहीं ये चीज इस तरह
2: उर्दू के में बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे उसकी बहुत सारी जो उर्दू उसमें बोली गई है वो मैंने लिखी है क्योंकि जो पहले उर्दू लिखवाई गई थी वो यहाँ की बॉर्न रेज लेडी से लिखवाई गई थी तो फिर वो उसमें बहुत सारे मसाइल होते हैं आप जनाब और इस तरह की बातें नहीं होती उसके अंदर तो आपने उसको बहुत लाइट सा रखना होता है जैसे घरेलू तरीके में बातचीत होती है आपने देखा होगा जब भी ये पाकिस्तानी फिल्म बनाते हैं या पाकिस्तानी फिल्म हॉलीवुड में भी बनती हैं या इंडिया में भी बनती हैं तो वो बहुत ज़्यादा अजीब किस्म की उर्दू और जनाब बोलना शुरू कर देते हैं जनाब वहाँ कोई भी नहीं बोलता वो सिर्फ मजाक के लिए कहते हैं सो एग्जैक्टली बहुत फिर उसकी ट्रांसलेशन भी हमने की फिर उसके बाद मैंने और पूर्वी ने बहुत सारी चेंजेस भी की उसके अंदर लाइनों में और चीज़ों में तो बहुत फिर वहाँ पे एक उर्दू के एक टीचर भी थे वो इंस्ट्रक्टर के तौर पे आए थे उनसे भी कंसल्ट किया गया था और फिर उनको मैंने ही कहा था कि ये जो लेडी तलाक दे रही हैं ये सीन नहीं हो सकता ये इस्लाम में जायज़ नहीं और ना ही इसको कोई मानेगा लेकिन वो एडमेंट थे कि नहीं वो बीबी से तलाक दिलवानी है तीन वो उसके ऊपर बड़ा उनको उनसे उन्होंने भी कहा कि ये एक मसला खड़ा हो जाएगा ये क्योंकि ये है ही नहीं ना रिलीजन के अंदर है ही खुला ले सकती है लेकिन तलाक नहीं दे सकती लेकिन वो एडमेंट थे वो यहीं की बॉर्न एंड रेज में उन्होंने कहा नहीं हम दिला के छोड़ेंगे हमने कहा दिला दें फिर सड़क की फिल्म में तो उस डायरेक्टर ने और राइटर ने करने ना वो तो उनका काम है आप तो सिर्फ
1: सही बात है
2: आप तो सिर्फ बात बता सकते हैं और फिर और भी दो चीज़ें थी जो मैंने फिल्म के अंदर मुझे उसमें जो फ्लॉज नज़र आए थे मैंने उनसे ज़रूर बात की थी उसके बारे में कि हमारा काम है जब आपको कोई झोल नज़र आए किसी चीज़ में तो बेचारे थोड़े से घबराते भी थे फिर जब मैंने गाना उसमें शुरू किया वो मुझसे पहली सी मोहब्बत वो आगे से मुझसे डायरेक्टर आई मुझसे पूछती आप सिंगर भी हैं मैंने कहा नहीं आज से पहले तो नहीं था तो मैंने कहा जी मैं तो एक्टर भी नहीं था पहले तो मैं तो रेडियो का बंदा हूँ तो इस तरह की बहुत सारी उन्होंने फारसी में मुझसे कुछ पूछा फिर अरेबिक में कुछ बातें हुई फिर जेरिलिन को मैंने वो रिकॉर्ड करके दी वो जो आखिर में नमाज रिकॉर्ड करके दी ताकि वो जो आखिर में पढ़ती है इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें थी और ये सीन थोड़े से चेंज भी किए गए हैं पहले पहला सीन जो हमारा था वो अफ्तारी के ऊपर था तो उसमें मैंने हाँ जी अफ्तारी की दुआ जो है वो मैं रोज़ा इफ्तार कर रहे होते हैं तो वो था जो बदल दिया गया सीन इस किस्म की बहुत सारी चेंजेस की गई हैं फिल्म के अंदर तो आपको जो मिला है इंशाल्लाह किसी दिन अगर हमें डिलीटेड सीन मिले तो उसमें बहुत अच्छी अच्छी जगह पे एक्टिंग हुई हुई है जो काट दी
1: माशाल्लाह से आप इस मामले में भी बहुत लकी रहे आजाद जी लकी रही है क्या कि आपने जो सॉरी भाई का प्ले किया था उसमें जो नुमान एजाज साहब इतने सालों एक्सपीरियंस इतने एक्सपीरियंस एंड दैट वाज योर फर्स्ट स्टेज प्ले जो आपने एक्ट किया था
2: नहीं मैं उससे पहले उसमें गिलानी जो कि उनसे भी सीनियर है तो,
1: ओ, यस,
2: तो क्या, हाँ, क्या हमने तीन काम किए और वो तीन काम इतने सीनियर और इतने कमाल लोगों के साथ किए जो कि लेजेंड्स हैं अपने अपने तो उनके साथ काम करने से जो एक्सपीरियंस आपका 10 15 20 साल में होना था ना वो तीन चार एक्सपीरियंसेस में ही हो गया तो ये बड़ा फ़ायदा होता है आप जब भी काम करें जो टॉप ऑफ द लिस्ट बंदा हो ना उसके साथ आपको काम करना चाहिए ताकि उसमें से बहुत सारी लर्निंग हो सकती है आपकी जो वैसे नहीं हो सकती
1: जी बिल्कुल
2: खुश रहिए हमारे साथ रहिए मेहरबान कदरदान और भी लोग हैं हमारे साथ नाइस ऑफ यू मैम थैंक यू वेरी मच फॉर किक स्टार्टिंग द शो और उससे हमें हाला याद आ गई बड़े दिनों के बाद रेडियो आजाद यू ऑन द एयर
3: जी
2: वालेकुम सलाम कैसी हैं
3: बिल्कुल मजे में अभी
2: बोर तो नहीं किया हमने और अर्शन जी ने आपको हम दोनों ने मिलके बोर तो नहीं किया आपको
3: नहीं मैं सुन रही थी
2: जी
3: तो मैं ये कहूंगी कि जो आप लोगों ने रेडियो शो शुरू किए वो मैं बेसिकली मैं बता दूं कि मैं ऑडिटरी पर्सन हूँ और मैं अपनी बुक्स भी घंटों सुन सकती हूँ तो मुझे आई एम अ लिसनर ज्यादा तो मुझे मजा ये आता है कि अच्छा कंटेंट और अच्छा बोलने वाला हो या अच्छी बुक हो तो मतलब यू एंजॉय. लेकिन जब से फेसबुक और यूट्यूब और डिफरेंट चैनल्स हैं, आप लोग चले गए हैं उस पे विजुअल पे. ये बताएं कि करते वक्त मैं ये कहूंगी एनर्जी डिवाइड हो जाती है.
2: हाँ जी.
3: विजुअल में और ऑडिटरी में और दूसरी चीजों में भी
2: बहुत मुश्किल.
3: डू यू थिंक कि यू जस्टिफाई विद ऑडियो एंड विजुअल एट द सेम टाइम, और कुछ चीजें विजुअल खा जाती हैं जो आप हमसे बातें करते थे शुरू के प्रोग्राम्स में, तो वो बिल्कुल ही फोकस होता था कि हम सिर्फ लिसनिंग पे फोकस कर रहे हैं
2: जी.
3: अभी इस वक्त जो है आप लोगों के कई महाज हैं कि वहाँ पे आपको देखना है कमरा साफ है, लाइट सही है, साउंड सिस्टम तो चलो उसके साथ है, लेकिन द अटेंशन इज डिवाइडेड. दूसरा ये बताएं कि इंसानी नेचर में हमारी जिंदगी खुद ड्रामा है एक तरह से देखा जाए. इट्स ऑन गोइंग ड्रामा फॉर 1800-1900 ईयर्स. इसके बावजूद हम सब दूसरे ड्रामे देखने और उसका मजा लेने या उसमें इन्वॉल्व होने की कोशिश करते हैं. व्हाट इज दैट कीड़ा?
2: ये सवाल बहुत ही अच्छा है. मैं थोड़ा सा इसको ना एक्सप्लेन पहले कर दूं. क्वेश्चन आपका ये कि हमारी अपनी ज़िंदगी में इतने ड्रामे होते हैं और हर वक्त कुछ ना कुछ लर्निंग हमारी हो रही होती है उन चीज़ों के बारे में, तो फिर हम दूसरे जो ड्रामे हैं, जो टीवी के ड्रामे हैं, जो बाकी दुनिया के जो ड्रामे हो रहे हैं, उसमें हमारा इतना इंटरेस्ट क्यों है वो, और ये कीड़ा क्यों है कि हमें हर एक की ज़िंदगी में और बाकी लोगों की ज़िंदगी के जो ड्रामे इतने शौक से हम देखते हैं? वो इसलिए देखते हैं कि जो स्टोरी टेलिंग का काम है ना, अगर आप पीछे जाएँ इंसान के बारे में जब आप सोचने लगते हैं ना, तो अगर आप किताब खोलते हैं रब की, तो उसमें आपको पता चलेगा कि रब ने आपको बहुत सारी कहानियाँ हमसे हज़ारों साल पहले की जो कौमें थी उनकी भी कहानियाँ सुनाई और उनके बारे में हमें बताया, क्योंकि 3-4-5-10 हज़ार साल पहले तो ये सारी चीज़ें नहीं थी हमारे पास कि इस तरह हमें डायरेक्ट उन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन आती. जैसे ज़ुल्करनैन के ज़माने के बारे में बात की गई है, इस तरह और बहुत सारी बातें की गई हैं. तो इंसान कहानियों में इंटरेस्टेड है क्योंकि उसके अंदर रब ने एक बहुत सारी एबिलिटीज़ के साथ एक इंक्विजिटिवनेस रखी है. इंक्विजिटिव होने की वजह से उसके अंदर एक इनबॉर्न बाय डिफ़ॉल्ट क्यूरियोसिटी जो है वो इंस्टॉल्ड है. अब उस क्यूरियोसिटी के वो इसलिए है कि हम अपने बारे में खोजें, अपने बारे में जानें, दुनिया के बारे में जानें. तारीख को जब हम देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो उससे हम कोई नतीजा अखज़ करें, उससे हम लेसन लर्न के साथ आगे अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर सकें, बार बार वो गलतियाँ ना करें. दूसरे लोगों के एक्सपीरियंस के साथ उनकी कहानियों से इबरत भी हासिल कर सकते हैं, सबक भी हासिल कर सकते हैं, और अपनी डगर भी हम जो है वो मुतय्यन कर सकते हैं कि अपना रास्ता जो है वो किस तरफ होगा. इसलिए इंसान को इनक्विजिटिवनेस जो है वो उसकी ज़ात के अंदर क्यूरियोसिटी डाली गई है. हमने क्या किया है, हमने क्योंकि हर चीज़ को हम नीच तरीके से सोचते हैं, जैसे हम रब जो है वो लिमिटलेस है, लेकिन हमने क्या, क्योंकि हमारे जहन की जो हमारी जो सोच है वो बहुत लिमिटेड है, वो हमारी सोच नीच है, तो हमने किया कि रब के कॉन्सेप्ट को नीच बना दिया कि रब सिर्फ मेरा है या मेरे मसलक से जो लोग ताल्लुक़ रखते हैं उनका है या मेरी सोच से जो लोग ताल्लुक़ रखते हैं उनका है, बाकियों का नहीं है, और मैं ही जो हूँ वो आला वरफा हूँ और मैं ही जन्नत में जाऊँगा. तो ये इस तरह की सोच से रब अनलिमिटेड को और लिमिटलेस को लिमिटेड कर दिया ताकि हम उसका अहाता कर सकें. बिल्कुल इसी तरह हमारी ये जो दूसरी चीज़ें हैं, जो ड्रामे जो ज़िंदगी में है. मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं, हमें जब एक्टिंग स्कूल में थे, हम मेथड एक्टिंग जब हम सीखने गए हॉलीवुड में, तो उन्होंने पहली 2-4 क्लासेस में हमको एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम की बात बताई. उन्होंने कहा कि जो लोग अच्छे एक्टर्स होते हैं वो इस बात की कोशिश करते हैं कि उनकी लाइफ में ड्रामा ना हो, वो स्क्रीन पर ड्रामा करें. अगर उनकी अपनी ज़िंदगी में ड्रामा होगा और बहुत ड्रामे होंगे तो फिर वो एक्टिंग पर फोकस नहीं कर सकेंगे. तो एक्टर की लाइफ में ड्रामा कम से कम होना चाहिए, वो बोरिंग होनी चाहिए या अनइवेंटफुल भी हो सकती है, लेकिन उस जो स्क्रीन के ऊपर जो उसने ड्रामा करना है उसकी जो प्रेपरेशन या उसका जो फोकस है वो वहाँ पे होना चाहिए. तो एक ही चीज़ को बार बार देखने से आप बार बार एक ही चीज़ सीखेंगे और वो टाइम ज़ाया करने की चीज़ है. तो जो आपको जो क्वेश्चन है, दूसरों की लाइफ में तब आपको इंटरेस्ट होता है जब आपकी अपनी पर्सनल कोई लाइफ नहीं होती है. आप गाड़ी चलाते हैं, आप कितना बैक व्यू मिरर में देखते हैं? कम से कम जब आपको ज़रूरत होती है, जब आप साइड चेंज करने लगते हैं, जब छोटी मोटी कोई चीज़ होती है या पीछे का ट्रैफिक आपको किसी कभी कभी कभी आप बैक व्यू मिरर में देखते हैं. ज़्यादातर आप आगे देख के गाड़ी चलाते हैं या राइट लेफ्ट में भी थोड़ा बहुत आप देखते हैं जब ज़रूरत पड़ती है, वो भी तब, वरना आप सीधा आगे की तरफ. ज़िंदगी भी इसी तरह है कि आप रेट्रोस्पेक्ट में चीज़ों को, पास्ट में चीज़ों को तब देखते हैं कि आपने क्या सीखा था, क्या समझा था। राइट लेफ्ट आप तब देखते हैं जब आप अपनी अलाइनमेंट सीधी कर रहे होते हैं और आप प्लान कर रहे होते हैं कि आगे जो ट्रैफिक है मुझे उसके हिसाब से गाड़ी की रफ्तार क्या रखनी चाहिए और मुझे किधर गाड़ी को लेके जाना है और किधर नहीं लेके जाना है। जैसे ही आगे कोई ट्रक या बड़ी चीज़ आती है आप हमेशा उसके राइट या लेफ्ट जाना चाहते हैं। क्यों? बिकॉज इंसान का जहन जो है वो देखना चाहता है आगे क्या है, क्योंकि जब आपको नज़र आना बंद हो जाता है तो चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती हैं, डायरेक्शन गुम हो जाती है। इसकी सिंपल सी मिसाल आपको देता हूं मैं। कभी शावर लेते हुए आप आंखें बंद कर लीजिए थोड़ी देर के लिए, तो जब थोड़ी देर के बाद आपको पता चलेगा आपको टोटली नॉर्थ जो है वो और है, आपका मुंह ही किसी और तरफ होगा। दो मिनट में आप सब भूल जाएंगे क्योंकि आँखें बंद करते ही आपकी डायरेक्शन जो है वो गुम जाती है। ठीक है, जैसे पानी कान में पड़ जाए तो क्या होता है, तब भी आपका जो है बैलेंस आपका ख़राब हो जाता है, बंदा गिरने लगता है, चक्कर आने लगते हैं बंदे को। बिल्कुल इसी तरह ज़िंदगी भी हमारी है। तो ड्रामा जो बाकी लोगों की ज़िंदगी में है या इर्द गिर्द हो रहा है उससे आपने सीख लिया फिर आगे बढ़ गए। बार बार एक ही ड्रामा देखना और एक ही तरह के काम करते रहने से फिर आप कुछ नहीं सीखते, बल आप उस ड्रामे का एक हिस्सा बन जाते हैं और वो ड्रामे का जो ना ड्रॉप सीन जो है वो आप खुद ही हो जाते हैं।
3: बिल्कुल,
2: तो ये एक पॉइंट था वो ड्रामे वाला। उससे पहले जो आपने जो क्वेश्चन किया था वो भी बहुत अच्छा है, मैं उसके बारे में बात करता हूँ। सवाल आपका ये था कि आपने कहा कि जब आप रेडियो पर शो करते थे तो सिर्फ आवाज़ से आप तमाम चीज़ें करते थे और आपका फोकस जो था ना सिर्फ आवाज़ के ऊपर और अपना मैसेज देने के ऊपर होता था, लेकिन अब क्योंकि विजुअल भी हो गया, डिजिटल मीडिया भी हो गया, तो इसमें तो बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस होती होंगी। तो इसका जवाब है बाकी लोगों के लिए तो हुई, मेरे लिए बहुत ज़्यादा हुई। ठीक है जी, क्योंकि मैं जब प्रेजेंट होता हूँ ना तो फिर मैं प्रेजेंट होता हूँ और मैं इर्द गिर्द कुछ नहीं देखना चाहता, कुछ नहीं सोचना चाहता, मैंने क्या पहना हुआ है, मेरे पे लाइट्स पड़ रही हैं या नहीं पड़ रही, मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं बोलता हुआ कैसा लग रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मैं नहीं देखना चाहता। लेकिन जब एक आगे कैमरा लगा होता है, उस कैमरे वो कैमरा स्क्रीन के मैं मिडिल में बैठा हूँ या नहीं बैठा, लाइट्स प्रॉपर लग रही हैं या नहीं, और ये सब क्यों हो रहा है, ये इसलिए नहीं हो रहा कि मैं अच्छा लगूँ। इस बात को भी गौर से सुनिएगा, कैमरे के आगे जब आप बैठते हैं ना, क्योंकि मैंने एक्टिंग पढ़ी है इसलिए मैं आपको बताने की ये जसारत कर रहा हूँ कि कैमरा है क्या चीज़ और वो क्यों हर बंदा कहता है कि जी वो कहते हैं ना पिक्चर इज़ वर्थ थाउजेंड वर्ड्स, वो एक तस्वीर जो है वो आपकी बहुत सारी बातें जो आप शायद हज़ार अल्फाज यूज़ करके बताएं वो आपकी एक तस्वीर दे सकती है। बिल्कुल इसी तरह कैमरा जो है ना, वो तस्वीर तो छोटी चीज़ है, कैमरा एक बहुत ख़तरनाक चीज़ है। आप जब आंख नहीं मिला पाते या जब आप ऑथेंटिक नहीं होते या जब आप फिल्म में आपने देखा होगा जब आप एक्टिंग नहीं कर पाते तो वो और छोटी से छोटी चीज़ कैमरा पकड़ लेता है। ठीक है जी, तो इसलिए जब आप कैमरे के आगे बैठे होते हैं तो उसके लिए आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है और दूसरा बंदा जो आपको देख रहा है उसके हिसाब से आपने चीज़ों को बैलेंस में रखना है। अगर आप स्क्रीन पर बैठे हैं तो आपको स्क्रीन में दरमियान में होना चाहिए, माइक आपके सामने होना चाहिए, लाइट जो है वो ऐसी होनी चाहिए कि कहीं कोई चीज़ गलत, अगर कोई शेडो भी आएगा तो बार बार बंदे का वहाँ पे जहन जाएगा। आपके चेहरे के ऊपर अगर कोई चीज़ चमक रही है माथे, जो कि पसीना कभी कभी आ जाता है, उसको भी डैब करके हटाना पड़ता है, वरना अगर कोई चीज़ बहुत चमक रही है तो काम की बात सुनते सुनते अगर उनका जहन जो है वो आपकी माथे की चमक पर गया तो वो बार बार उसी को देखते रहेंगे। वो जो माइक पेंस नहीं था उसको मक्खी बैठ गई थी तो हर बंदे ने सारी उस कोई बात किसी ने नहीं सुनी, बस मक्खी के ऊपर सारा तबसरा था। इसी तरह जो आपके बाल हैं, जो आपकी शक्ल इस वक्त लग रही है, जैसे आपने कपड़ा जो आपने पहना हुआ है, ये सब चीज़ों का बैलेंस में होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पॉइंट कोई पुट अक्रॉस करना चाहते हैं या कोई रीज़न एंड लॉजिक देना चाहते हैं किसी इंसान को कि वो उसको गौर से सुने, आप कैसे लग रहे हैं कि बजाए वो जो बात की गई है वो उसके दिल को पकड़े, बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आपको पता है स्क्रीन का अटेंशन स्पैन कितना है, यूट्यूब का आपको पता है जो उसके जो व्यूज़ होते हैं वो 3 सेकंड के बाद काउंट होता है, यानी कि लोग 3 सेकंड से पहले ही स्किप कर देते हैं। इतना इम्पॉर्टेंट है स्क्रीन के ऊपर जब आप आएँ तो आपकी आवाज़, आपका अंदाज़ और जो भी आप कहना चाहते हैं उसको पहले 4-5 सेकंड में जो आप कहते हैं वो इतना इम्पॉर्टेंट है, वरना स्किप कर दिए जाएंगे आप। तो बिल्कुल इसीलिए कैमरा जो है वो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसके सामने काम करना और उसके तमाम लवाजमात पूरे करने की कोशिश करना। इसीलिए अभी हमने फर्स्ट स्टेप में सिर्फ वेब कैम से हमने कोशिश की आप लोगों तक चीज़ें पहुँचाने की, बैकग्राउंड यू नो बहुत सारी और चीज़ें। जैसे जैसे हम चीज़ों को जानते जा रहे हैं क्योंकि प्रोफेशनल लोगों के साथ हम काम नहीं करते थे शुरू में भी. जितने लोग भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी इंडियंस और यू नो बांग्लादेशी यहाँ पे आते हैं वो सब बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई भी शेफ़ नहीं होता रेस्टोरेंट्स के अंदर. सब लोग यहाँ पे आते हैं उनको पता चलता है नान लगाने के बड़े पैसे मिलते हैं $3,000-4,000, तो फिर वो नान भाई बन जाते हैं. ठीक है जी, जिसको इंग्लिश में सू शेफ़ कहते हैं. ठीक है बिल्कुल इसी तरह वो यही काम करता है एक्चुअली. लेकिन बाकी जितने भी लोग इस वक्त रेस्टोरेंट्स में खाना पका रहे हैं सब ने यूट्यूब से सीखा हुआ है. इसमें से कोई पक्का मिसालची जो है ना पिछले जो ज़माने का खाना पकाने वाला जो है ना वो बहुत कम मिलेगा आपको. ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरह सोच के आपने ये बात को आगे लेके चलना है कि लोग दे कीप लर्निंग अलॉन्ग द वे, ऑन जॉब ट्रेनिंग करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को इम्प्रूव करते हैं. और फिर और कभी कभी हम जब लोगों को ढूंढने निकलते हैं तो सालों लग जाते हैं, हमें काम का बंदा नहीं मिलता. और फिर मुसलसल कोशिश करने के बाद जब आपको बंदे मिलते हैं तो आपको पता चलता है जो काम 2-3 दिन में हो सकता था इसके लिए हमारे 2-3 साल लग गए, लेकिन वो प्रोसेस है इन तमाम चीज़ों का. तो फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें इंप्रूव भी हो रही हैं, जैसे अभी आपने देखा होगा रेडियो आज़ाद पे भी चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं, लेकिन ये चीज़ें स्टेप बाय स्टेप होती हैं. और अभी भी हमने दुनिया में बाहर निकलने की उस तरह की कोशिश नहीं की जिस तरह करनी चाहिए थी, और उसके भी कुछ रीज़न्स थे. लोग जो है ना, ये जो बातें मैं आपसे करता हूँ या रेडियो आज़ाद पे बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, इनकी मार्केट वैल्यू दुनिया में उतनी नहीं है जितनी आप समझते हैं. ठीक है, दुनिया में और बहुत कुछ बिकता है. अगर इसकी जगह हम एक बिल्ली रख लेते और बिल्ली को अजीब अजीब तरीके से गुदगुदाते रहते और उसकी वीडियो बनाते तो मिलियंस में व्यूज़ मिलते हैं. और जितनी आप निकम्मी स्टूपिड बातें करते हैं उतने आपको दुनिया में ज़्यादा व्यूज़ मिलते हैं. कभी उसको लोग इन्जॉय भी बहुत ज़्यादा करते हैं, और ज़्यादातर लोग मेंटल कैलिबर भी हमारा इतना ही है और इतनी है हमारी अक्ल और समझ बूझ भी है. ठीक है, क्योंकि जब आप हैवानी हालत में और एक धक्का इनर्शिया के स्टेज में आप अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हो तो काम की अक्ल की समझ की बातें जो है ना वो आपको ये बातें आपको लगती हैं जब 30, 32, 35, 40 साल आपकी उम्र हो जाती है ना, और जब आपको पता लगता है कि जो कुछ आपने अपने बारे में सोचा था, जो कुछ दुनिया के बारे में सोचा था और जो कुछ आपने रब के बारे में और आखिरत के बारे में सोचा था वो वैसा था ही नहीं, वो कहानी कुछ और है. अब फिर से ज़िंदगी शुरू करनी पड़ेगी. उसको मिड लाइफ क्राइसिस कहते हैं. उसको बहुत सारे लोग उस वक्त तक बिटर हो चुके होते हैं. बहुत सारे लोग जो है ना वो रिएक्शनरी एक लाइफ जीते हैं, वो अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू बना लेते हैं. आज का क्लिप बड़ा अच्छा था, प्रोसेस ऑफ अनलर्निंग, कि क्या चीज़ें ऐसी हैं जो हमने ज़िंदगी के साथ साथ ना, आपने देखा होगा हर बंदा लर्निंग पे बड़ा ज़ोर देता है लेकिन साथ साथ अनलर्न करना भी चीज़ों का बहुत ज़रूरी होता है. जब हम बच्चे थे तब से लेके जवानी तक और मिडिल एज तक हमने बहुत सारी ऐसी बातें रास्ते में पिक कर ली हैं जो कि हमारे लिए हानिकारक है. ठीक है जी, जो कि हमारे लिए इंजूरियस टू हेल्थ है, मुजरे सेहत है हमारे लिए, जहनी सेहत के लिए भी, जिस्मानी सेहत के लिए भी, रिश्तों की सेहत के लिए भी, और ज़िंदगी में जो हमारा मकसद है उसकी सेहत के लिए भी. तो इनको आपने अनलर्न भी करना होता है. मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो आज भी किसी पर ट्रस्ट नहीं करते. अगर आप इंसानों पर ट्रस्ट नहीं करेंगे ना तो फिर आपकी ज़िंदगी बेइंतहा मुश्किल हो जाएगी. वो शौहर जो बीवी पे ट्रस्ट नहीं करता उसकी ज़िंदगी अजाब में है. वो बीवी जो शक करती है अपने शौहर पे वो हर वक्त तकलीफ में, उसने खुद अपने आप को आग लगाई हुई है. ठीक है जी, और जो लोग अपने पार्टनर्स पे ट्रस्ट नहीं करते, जो लोग जिनसे अपने बिजनेस जो वेंडर्स हैं आपके उस पर ट्रस्ट नहीं करते, जो एडवर्टाइजर्स हैं आप उनके या वो आपके उन पर ट्रस्ट नहीं करते, ये सारे का सारा काम ट्रस्ट पे खड़ा है. रब के साथ जो हमारा रिश्ता है, आप देखते हैं सुनते हैं समझते हैं चीज़ों को, बट एट द एंड ऑफ द डे वो सब एक बिलीफ सिस्टम के ऊपर खड़ा है. इसीलिए ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है. इंसानों के ऊपर एतमाद करना, आँख खुली रखना, चीज़ों को ट्रांसपेरेंट रखना, ये बहुत ज़रूरी है. कब तक आप हर वक्त अन्ना नहीं था जो 24 घंटे चुकन्ना रहता था, पता नहीं वो क्या करता रहता था, एग्जॉस्ट हो जाएंगे, कॉर्टिसोल बॉडी में इतना स्क्रीशन उसकी होती है बंदे को समझ नहीं आता, बंदा फामा हो जाता है, ना उसको नींद आती है ना कुछ. और मैं जितने लोगों की ज़िंदगी देखता हूँ इतनी अनसर्टेनिटी में मर रहे हैं, वो किसी पे वो भरोसा नहीं करते किसी पे भी. और यकीन करें मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में आज तक जिन लोगों को भी देखा है ना वो किसी पे भरोसा नहीं करते. मैं उन पे कभी भरोसा नहीं करता, कभी भी भरोसा नहीं करता, क्योंकि वो जिस चीज़ पे भरोसा करते हैं वो उनकी अपना जहन है. और मैंने उनको हमेशा ज़िंदगी में मार खाते देखा है. मोस्ट ऑफ दीज पीपल आर रियली रियली स्टूपिड इन द एक्शंस दैट दे हैव टेकन इन देयर लाइफ. इंसान कभी स्टूपिड नहीं होता, हमारी चॉइसेस स्टूपिड होती हैं, क्योंकि इंसान तो बहुत रिफाइंड बीइंग है, लेकिन हमारी चॉइसेस चीख चीख कर हमें बता रही होती हैं कि हमारी चॉइसेस स्टूपिड है. जिन लोगों को हम चुनते हैं वो हमारी स्टुपिडिटी होती है। जिस एनवायरनमेंट को हम चुनते हैं किसी काम के लिए, वो हमारी स्टुपिडिटी होती है। एक सेमो थोर वाली ज़मीन के अंदर आप बीज डाल देते हैं और आप फिर कुदरत के साथ लड़ पड़ते हैं कि भाई मेरा फसल नहीं लगी, मेरे साथ जुल्म हो गया, आपने प्री रिक्विजिट्स पूरे नहीं किए। तो मैंने ये अपनी ज़िंदगी में, ये मेरा एक्सपीरियंस है कि जो लोग किसी पे ट्रस्ट नहीं करते, किसी पे भी नहीं, सिर्फ अपने जहन पे ट्रस्ट करके वो चलना चाहते हैं और उनका जहन कॉन्ड है पहले से, उन्होंने कुछ चीज़ें जो बचपन में उनके साथ हुई हैं उसको अपने साथ आज भी बांध रखा है, जो किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकता ना, उस पे कोई ट्रस्ट नहीं करेगा। अच्छा दोस्त पाने की सबकी ख्वाहिश होती है, लेकिन जब तक आप अच्छे दोस्त की डेफिनेशन को समझेंगे नहीं, अच्छा दोस्त बनने की क्वालिटीज़ आपके अंदर नहीं होंगी, आपको कभी अच्छा दोस्त नहीं मिलेगा। आपको हर चीज़ के लिए क्वालिफाई करना पड़ता है, डिज़र्व करनी पड़ती हैं चीज़ें, और अगर आप नहीं डिज़र्व करेंगे ना तो मिली हुई चीज़ें आपसे ले ली जाएंगी वक्त के साथ साथ। ये मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में होता हुआ देखा, इसीलिए मैं कुछ चीज़ों के बारे में बहुत कॉन्शियस हूँ। मैं अपने दोस्तों के इसीलिए मैं ही अपनी ज़िंदगी में आज तक एक ऐसा बंदा अपने आप को मिला हूँ जो दिल से ये कह सकता है कि मेरे जो 5-6 दोस्त हैं उससे बेहतर मैंने आज तक पूरी ज़िंदगी, मैं रेडियो पे भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, दुनिया में लोगों को मिलके भी मैं उनको बताता हूँ मेरे दोस्तों ने क्या किया, वो कहते हैं हमारे साथ तो ऐसा नहीं होता। और मैं अक्सर जब लोग मुझे गिराने की, तोड़ने की, तकलीफ़ देने की, परेशान करने की कोशिश करते हैं, चाहे फैमिली से करें, चाहे बाहर से करें, चाहे बिजनेस वाले लोग करें, या जिस ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन में मैं जाता हूँ, लोग ये पूरी कोशिश करते हैं, वो मुझे कभी नहीं तोड़ पाते, एक वजह से सिर्फ, क्योंकि जैसे मेरे दोस्त हैं वो मुझे कभी टूटने नहीं देते, वो हमेशा मेरे साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। 40 साल तक ऐसा नहीं हुआ तो मैं कैसे मान जाऊँ आगे होगा, अगर होगा भी तो एक जाएगा, दो जाएंगे, तीन जाएंगे, चार, सब नहीं जाएंगे। तो बिल्कुल इसीलिए ये जो रिश्ते हैं इसके ऊपर काम किया होता है, इस पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इंसानों के ऊपर करना पड़ता है जो आप किसी पर नहीं करते। और कई लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो किसी पर ट्रस्ट नहीं करते, वो आप पर ट्रस्ट करते हैं, लेकिन क्या वो खुद ट्रस्ट के काबिल हैं, ये सवाल मैं उनसे हमेशा पूछता हूँ कि जब आप किसी पर ट्रस्ट नहीं करते तो क्या आप किसी के ट्रस्ट के काबिल हैं? और जवाब अक्सर ना में होता है, क्योंकि जब जब मैंने उन पर ट्रस्ट किया उन लोगों ने अपना काम पूरा नहीं किया, लेकिन उनके पास लॉजिक्स, रीजंस सारे पूरे होते हैं। क्योंकि जब आपके पास बहाने, आपने एक दफ़ा अपने जहन को, सिर्फ एक चीज़ अगर आप अपने आप में बदल लेना तो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है, मैं गारंटी देता हूँ आपको। आप जब गलती करते हैं ना तो उसके बहाने ना बनाएं, उसकी इलॉजिकल लॉजिक्स ना दें, उसकी जस्टिफिकेशंस ना दें, आप कभी नहीं सीखेंगे, कभी भी नहीं सीखेंगे। क्योंकि जिस जहन को बहाने सूझने लगे और उसने दे एंड ही कुड गेट अवे विद दोज बहानास, एक्सक्यूजेस, इलॉजिकल लॉजिक्स, वो कभी चीज़ नहीं सीखेगा। जिस आदमी को नकल करने की आदत हो जाती है, बूटियाँ बनाने की आदत हो जाती है, किताब रख के पेपर देने की आदत हो जाती है, वो कभी इल्म नहीं हासिल करने की कोशिश करता, उसको पढ़ाई सूझती नहीं है, उसको सवाल याद ही नहीं होते। मैं जानता हूँ लोगों को, मेरे साथ बहुत सारे लोग इसी तरह बड़े हुए हैं, वो तब भी नकल मार रहे थे, वो आज भी नकलें मार रहे हैं दूसरे लोगों की, और कहीं नहीं पहुँचे ज़िंदगी में। ज़िंदगी में फेल हो जाना वो बहुत अच्छा है, आप उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं, आपको शर्म आ सकती है, आप गैरत पकड़ सकते हैं, आप जो है वो यू नो कुछ उठकर कर सकते हैं, लेकिन अगर नकलें मार के आपको पास होने की आदत हो गई, आप अपनी दोस्ती में भी फेल होंगे, आप अपनी बेगम के सामने, शौहर के सामने भी फेल होंगे, आप अपनी औलाद के सामने भी फेल होंगे, आप अपने पार्टनर्स के सामने भी फेल होंगे, आप रब के सामने भी फेल होंगे। क्योंकि रब इसीलिए कहते हैं ना कि जो हुज़ूर पाक की कितनी खूबसूरत बात, जो इंसान इंसानों का शुक्रगुजार नहीं वो रब का शुक्रगुजार नहीं हो सकता। बहुत सारी चीज़ें इस दुनिया में, मुझे खान जी का वो जुमला याद आता है, मैं 6-7 साल का था, उनके पास लेटा हुआ था, मैं कोई बात कर रहा था कि रब से मोहब्बत की हम अक्सर बात करते हैं, रब की मोहब्बत जो है वो कैसे हासिल हो सकती है, तो उन्होंने कहा रब की मोहब्बत का रास्ता जो है ना वो इंसानों के दिलों से होकर गुजरता है, जो इंसान इंसानों के दिल में अपने लिए मोहब्बत नहीं पैदा कर सकता वो रब तक नहीं पहुँच सकता। बहुत छोटे थे हम, वो उस वक्त कोई रूमी की किताब पढ़ रहे थे कोई, या जो उनकी बुक्स होती थी, तो लोगों के दिलों से गुजरते हुए ही ये रास्ता बनता है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो मैं अक्सर यू नो कहना भी चाहता हूँ, और मेरे इर्द गिर्द बहुत सारे यही बातें कहने के लिए मैं लोगों से नहीं मिलता। और यहाँ आज के हमारे इस प्रोग्राम का इख्तिताम होता है जी। दिस इज़ आज़ाद साइनिंग ऑफ। यू कैन ऑल्सो लिसन टू आर
4: रेडियो स्टेशन एट www.radiozart.us. इसके अलावा अगर आप पोएम्स सुनना चाहते हैं, नज़में सुनना चाहते हैं, तो आप साउंड क्लाउड पे जा सकते हैं, मिक्स क्लाउड पे. स्पेशली बताना जरूरी है उन तमाम लोगों को जो शोज की रिकॉर्डिंग या अपने फेवरेट शोज की रिकॉर्डिंग सुनना चाहते हैं अपने टाइम के ऊपर. आप लोग मिक्स क्लाउड पे जाके रेडियो आजाद को सर्च कीजिए और हमारे शोज वहां पे आप उनकी रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं. और ये तो आपको मालूम ही है कि जिन लोगों के पास आईफोन ऐप है, एंड्रॉयड है, ब्लैकबेरी है, स्मार्टफोन्स हैं, वो लोग हमें हमारे आईफोन ऐप के थ्रू सुन सकते हैं जो है रेडियो आजाद. दुआ में याद रखिएगा, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे. और सबसे इम्पोर्टेंट बात, लोगों के लिए आसानियां पैदा कीजिएगा, रब आपके लिए आसानी पैदा करेगा. खुदा हाफिज़.

0: जब भी आपके दरवाजे पे कोई दस्तक हो तो छोटे बच्चों को दरवाजा खोलने से मना करें और खुद भी दरवाजा खोलने से पहले इस बात की तसल्ली कर लें कि दस्तक देने वाले से आप और आपका घर महफूज है। इंस्पायर एफएम कम्युनिटी अवेयरनेस मैसेज।
1: From the heart of Bedfordshire in Luton on 105.1 FM. This is Inspire FM News.
2: Just because you've left your car, it doesn't mean you have to switch off. Keep listening to Inspire FM online or click on your smart TV. Either way, you can stay connected to Luton's best radio station locally, all day and all night.
1: This is Inspire FM.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, innal ghadaba yufsidu al-imana kama yufsidu as-sabr al-asal. That anger ruins faith just like the aloe plant ruins honey.
4: There are a million reasons to listen to Odeo.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة للصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Would you like to sponsor the Azan? If so, give us a call on 01582-481-810 or email us on info@inspirefm.org.
2: From the studios of Inspire FM, the time is now 10 o'clock.
3: In 10 dinon mein main us kitab ka khulasa aapke samne pesh karna cha raha hu. और इस एक सवाल का हम जवाब ढूंढ रहे हैं. मैं अपने लिए, मैं आपके लिए भी नहीं, मैं सिर्फ अपने लिए इस एक सवाल के जवाब में ये बात पेश कर रहा हूँ. मेरे नज़दीक कुरान इंसान का कलाम हो ही नहीं सकता, क्यों नहीं?

तो ये बात वाजे हो गई। कभी कभी हम बात करते हैं मालूमात के लिए, मालूमात देने के लिए, कभी कभी हम बात करते हैं अपने जज्बात का इजहार करने के लिए। अरबी का एक कायदा है कि अगर आप इन्ना इस्तेमाल करोगे ना, तो वो सिर्फ मालूमात के लिए हो सकता है, जज्बात के लिए नहीं। इन्ना का मकसद है खबरी कलाम। इन्ना अगर मैं इस्तेमाल करूँगा तो मैं किसी और को कोई बात समझाने लगा हूं, किसी और के लिए मैंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, अपने लिए नहीं। अगर मैं इन्ना इस्तेमाल ना करूं तो हो सकता है कि वो कलाम, वो बात मालूमात के लिए हो, और ये भी हो सकता है कि वो जज्बात के लिए हो। उसमें दोनों पॉसिबिलिटीज रह जाती हैं। अब फातिहा में कभी कभी आप फातिहा पढ़ेंगे किसी को दावत देने के लिए। आप अंदाज़ा करो, कुरैश के ज़माने में कोई फातिहा पढ़ रहा हो, कोई सहाबी फातिहा पढ़ रहे हो, और कोई मुशरिक पास से गुजरे, उसको मालूमात मिली ना। लेकिन हो सकता है उसी वक्त जो सहाबी वो फातिहा पढ़ रहे हैं, वो अपने दिल से पढ़ रहे हैं, अपने लिए पढ़ रहे हैं, यानी उसके दोनों असरात बाकी रह गए इन्ना निकालने की वजह से। ये बात समझ में आ गई। फिर खतीब क्यों कहता है इन अल्हम्दुलिल्लाह, इसकी क्या तुक बनती है? क्योंकि खतीब का असल मसला अपने से बात करना है कि आपसे बात करना है, आपको मालूमात पहुंचानी है, आपको याद दहानी करानी है, तो इन्ना का लफ्ज़ वहाँ उसकी सेंस बनती है। फिर दूसरी चीज़ अरबी के कवायद के बुनियाद, ये ज़रा गहरी बात है, इसको ज़रा गौर से समझ लेना। अरबी में तीन तरह की ऑडियंस होती है, तीन तरह के सुनने वाले, बलागत में हम पढ़ते हैं, तीन तरह के सुनने वाले होते हैं। एक सुनने वाला वो है जिसको आपकी बात से कोई इनकार नहीं है, वो आपका ना मुखालिफ है ना हामी है, कोई इनकार नहीं, न्यूट्रल है, ठीक है। एक ऐसा शख्स है जिसको आपकी बात पे लगता है शक होगा, उसको पूरी तरह एतबाद नहीं है आपकी बात पे। अगर कोई कहे नवाजुद्दीन खान आ गए, हाँ आ गए, वाकई वो जो वाकई है ना, वो क्या है, उसको आपकी बात पे यकीन नहीं है। तीसरा है जो आपकी बात से इख्तिलाफ करता है। तीन तरह की ऑडियंस है, इत्तेफाक करने वाला, शक करने वाला और इनकार करने वाला, तीन। अरबी में जब आप बात में जोर डालते हो ना इन्ना के जरिए, और भी अल्फाज हैं, जब आप एक जोर डालते हो ना, तो उसका मकसद होता है किसी ऐसे शख्स से बात करना जिसके दिल में शक हो। जिसके दिल में शक हो, उसके शक को हटाने के लिए आपको थोड़ी बात में जोर डालना पड़ता है, और उसके लिए कई अल्फाज हैं, उनमें से एक बहुत आम इस्तेमाल किए जाने वाला लफ्ज है इन्ना। अगर आप इन्ना इस्तेमाल नहीं करोगे तो क्या बात सामने आती है, जिससे आप बात कर रहे हो वो आपकी बात से मुत्तफिक है, उसको आपकी बात में ना कोई इनकार है ना कोई शक है। फातिहा में इन्ना ना इस्तेमाल करने से अल्लाह ताला ने ये दर्स भी सिखा दिया कि ये बात, ये हकीकत अल्हम्दुलिल्लाह, ये हर इंसान की रूह के अंदर, उसकी रूह को इससे इत्तेफाक है। शायद वो बाहर से हिंदू हो, बाहर से ईसाई हो, बाहर से एथियस्ट हो, बाहर से जाहिल हो, जो भी हो, अंदर से हकीकत यह कि उसको इत्तेफाक है, उसकी फितरत से बात की जा रही है। इसीलिए उसको सूरतुल फितरा भी कहा गया है, ये फितरत की सूरत है, इंसान की नेचर में इस नतीजे को कबूल करना है, और इसलिए वहां इन्ना के डालने से इसके असर पर कमी आ जाती। कभी कभी हम समझते हैं ज्यादा अल्फाज इस्तेमाल करोगे तो ज्यादा असर होगा, नहीं नहीं नहीं, कभी कभी कम अल्फाज इस्तेमाल करने से असर बढ़ जाता है। तो यह इन्ना वाली बात समझ में आ गई। मैं ये बस एक एक्सपेरिमेंट है अभी, अल्लाह ताला की तारीफ और अल्लाह के शुक्र की जो ताबीर कुरान ने इस्तेमाल की अल्हम्दुलिल्लाह, वो कितने और तरीके से हम कह सकते थे, और अगर उनमें से कोई और तरीका हम इस्तेमाल करें तो क्या फ़र्क पड़ता है। अगर हम कहते हैं कुरान इतना परफेक्ट है, उसमें कोई लफ्ज़ अपनी जगह से बदल नहीं सकता, तो चलो ये एक्सपेरिमेंट करते हैं, थोड़े थोड़े बदल के देखते हैं क्या फ़र्क पड़ जाता है। एक और, अभी लगता है आप इतना नहीं सोए अभी, तो मैं एक और आपके सामने रख दूँ। ईद की नमाज जब हम जाते हैं तो क्या पढ़ते हैं, रस्ते में तकबीरात पढ़ते हैं, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द।